0: अथ वार्ताः विस्तरेण केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् अनेन परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रे अनुसन्धानं योजना निर्माणं मूल्यांकनं निरीक्षणं तथा प्रभाव मूल्यांकनञ्च सुदृढं भविष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्था रूपेण कार्यं करिष्यति।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् अयं निधिः उच्च विकास क्षमता युक्तेभ्यः व्यावसायिक सामर्थ्यं विस्तार क्षमतां च प्रदर्शितवद्भ्यः लघु मध्यमोद्यमेभ्यः दीर्घकालिकं स्वामित्व निवेश धनं प्रदास्यति। मन्त्रिणा उक्तं यत् निधेः अधिकांश भागः विनिर्माण क्षेत्रे केन्द्रितेभ्यः लघु मध्यमोद्यमेभ्यः प्रदास्यते। सेवाक्षेत्रे, प्राविधिक क्षेत्रे, नवोन्मेषाधारितेषु क्षेत्रेषु तथा रणनीतिक मूल्य श्रृंखलायां च कार्यं कुर्वद्भ्यः उद्यमेभ्यः अपि अयं निधिः साहाय्यं प्रदास्यति।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें MSMEs बहुत